0: जानकारी ले 587-917-0807 कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइटिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है। पंजाबी रेडियो कैलगरी 102.7 FM ते ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच हर हफ्ते 5 दिन प्रसारित हुंदा है। प्रोग्राम का प्रसारण समां सोमवार तो लैके शुक्रवार तक कैलगरी समय अनुसार शाम के 6 बजे तो 8 बजे तक, और भारतीय समय अनुसार यह प्रोग्राम मंगलवार तो लैके शनिचरवार तक सवेर के 5:30 तो 7:30 तक प्रसारित होता है। आओ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस अलाही संदेश के नाल।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

एक बार फिर तुम्हारी सेवा दे विच हाजिर। आप आज एक विशेष टॉपिक ते गल करांगे, गुरु नानक पातशाह दे इस मिशन की गल करांगे, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। इस ते आपां कल भी विचार कीती सी, पर अज इसनूं आपां एक नवें परिप्रेक्ष्य विच देखांगे। जदों पंथ की गल, पंथ हुंदा है रस्ता, तो गुरु नानक पातशाह दे फॉलोअर जड़े सन उन्हां नूं नानक पंथी किया गया। इस तरह उस जमाने दे विच विशेष भगत साहिबान दे जड़े फॉलोअर सन उन्हां नूं भी उन्हां दा नां लैके, जिवें कबीर पंथी, रविदास पंथी या होर भगतां दे जड़े भी फॉलोअर सन, उन्हां नूं उस तरह ही उस भाव जिहड़ा जीवन की जाच उन्होंने दिती, उस ते तुरन वाले, उस ते मुताबक जिंदगी गुजारन वालिया नूं पंथी किया गया। पंथी मतलब उस पंथ ते तुरन वाले। गुरु नानक साहब जिस विचारधारा नूं प्रदर्शित करदे ने, उस नूं भाई गुरदास जी कहिंदे ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। कि उन्होंने संसार के अध्यात्मक खेतर दे विच एक अजिही अथॉरिटी कायम की, एक अजिहा नवा जिसनों निर्मल पंथ किया गया। निर्मल तो भाव आ कि जिहड़ा मनुख नूं बिल्कुल मनुखतावादी वैल्यूज़ दे, मनुखता दे गुणा दे आधार ते, भाव रबी गुणा दे, दावी गुणा दे आधार ते जीवन गुजारन दा एक मार्ग दिंदा है, जिस दे विच कोई मिलावट नहीं है। हुण जदों आपां गल करदे हां, कई वारी जे आपां इतिहास नूं देखिए, तां जदों तों इंसान ने होश संभाली, पाओ पिन पिन स्टेजा तो विचरदा आया। मैं कल दे प्रोग्राम च जिक्र कीता सी कि लगभग 12 मिलियन 1,20,00,000 साल पहला जदों मनुख दी जिहड़े बाकी ग्रेट एप्स सन उन्हां नालों वखरा होण दी प्रक्रिया शुरू होई, उस तों बाद उस ते कई स्टेज ने जिसनों आर्डिपैथिक्स कहिंदे आ, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स कहिंदे आ, जिथे अजे मनुख दो पैरां ते भी चलदा सी पर किते ना किते चार पैर भी इस्तेमाल करदा सी। ते पहला जिहड़ा मनुख जिसने बिल्कुल यानी कि दो पैरां ते चलना शुरू कीता, होमो हैबिलिस, अज तो 30-25,00,000 साल पहला उन्होंने ही पत्थर दा दे अवजारां दा, पत्थर नूं हथियार दे तौर ते इस्तेमाल करना आरंभिया। वो बिल्कुल कल्ले नहीं सन रहिंदे, ग्रुप दे विच रहिंदे सन, यानी कि एक सोशल जीवन सी। इसका मतलब आ कि एक जीवन दा मार्ग उन्हां कोल भी सी। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹਿਆਂ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 3,00,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸਪੈਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
चींटियां की मिसाल लै सकते हैं, मधुमक्खियां की मिसाल लै सकते हैं, होर कई योजे जीव ने जंगली जीवों के विच भी, इवन इतों तक कि हाथी भी इकट्ठे रहिंदे आ। जो इकट्ठे रहिंदे आ तां उन्हां दी तां एक वे ऑफ पैटर्न, एक वे ऑफ कम्यूनीकेशन भी हैगा, उन्हां दी एक जीवन जाच भी हैगी। मनुख की इस सादा जीवन जाच के विच जदों मनुख ने थोड़ा थोड़ा बोलना सीख्या, तो अज तो 70 तों 75 हज़ार साल पहला जदों जिसनों मनुखता के इतिहास विच या इस धरती के इतिहास विच, जमीन के इतिहास के विच आपां नां देंदे आ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोच का एक इनकलाब। तो उस वेले मनुख ने अमेजन करना, कल्पना करनी सीख ली, कहानियां बनानियां सीख लिया। हौली हौली उन्हां दे जिहड़े एक दूजे दे नाल संवाद दे वाक जिहड़े थोड़े वड्डे हुंदे गए, जिस तरह जंगल दे विच कम्युनिकेशन तां अज बंदर भी करदा है, जो दरख्तां ते चढ़िया होया उन्हें एक लफ्ज़ दे विच, एक आवाज़ दे विच कह देना है, कोई भी जिहड़ा उन्हें नाम रखिया होना, शेर आ गया, फलाना जानवर आ गया, फिर उहो जी आवाज़ जिहड़ी आ जदों चला गया तो किसी ने कह देना कि चला गया, पर उह सेंटेंस पूरे नहीं सी हुंदे। मनुख दी भाषा दे विच वह वाक पूरे होने शुरू होए, हौली हौली एक कम्युनिकेटेड केशन लैंग्वेज के नाल नाल एक काल्पनिक कहानियां, सवाल होंद के बारे, ये सारा कुछ जदों नाल दी नाल आया, तो फिर मनुख ने इकट्ठा रहना शुरू किया। उस तो बाद अज तो 12-13 हज़ार साल पहला जदों मनुख ने एग्रीकल्चर भाव किसानी सीख ली, चीज़ां नूं जमीन दे विच बीज के फसलां नूं फिर वढ़ना ते संभालना सीख लिया, उस दे नाल ओह एक थां ते एकत्र हो गए, हौली हौली पिंड, उस तो बाद शहर, ये सारा कुछ जिहड़ा होंद च आया। उस सारे दे संदर्भ दे विच भाषा भी आई, एक वे ऑफ लाइफ भी आया, ते फिर ये वे ऑफ लाइफ जिहड़ा है थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक शक्तियों नूं देख के भिन्न भिन्न विश्वास बनते गए, वो कॉम्प्लीकेटेड भी होंदा गया। बहुत सारे या विचारधारा भी आई, जिस तरह आपां इतिहास नूं निगाह मारीए, बहुत सारिया सभ्यतावां, सिविलाइजेशंस, तहजीबां, जिवें माया तहजीब, बेबीलोनियंस, भारत दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसनों आपां कहिंदे आ, हुण तो काफ़ी दूर तक यानी भारत दे विच उसदे अवशेष मिलते आ, मिस्र की सभ्यता, इजिप्शन सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन, बहुत सारिया ओहो जिहियां सिविलाइजेशनस ने एको टाइम ते भी सन जिन्हां दे विच आदान प्रदान भी हुंदा रहा, व्यापार भी हुंदा रहा, ते उन्हां दी खुदाई तो बहुत कुछ पता चलता है। ये सारा कुछ जिहड़ा सी ये वे ऑफ लाइफ ही सी। हुण आपां गल करदे हां कि भाई जिस वेले अज तो 3,000 साल कह सकते हैं या 3,500 साल पहला जदों एक ईश्वरवाद का कंसैप्ट आया, हौली हौली उस तो पहला अलग अलग देवत्या की गल सी, ग्रीक दे विच भी देवते सन, भारत दे विच भी देवते सन, पर नाल दी नाल एक पासे ग्रीक दे विच विचारधारा, फिलासफी, भारत दे विच दर्शन होंद च आया। जदों इन्हां नूं देखदे आ इन्हां ने बाद दे विच जिहड़ी लाइफ सी, क्योंकि आकांक्षावां दे नाल नाल लाइफ नूं कॉम्प्लीकेटेड कर दिता, ते गुरमत दे आगमन तों पहला जदों असीं गौर नाल देखदे हां, भावें उह पछमी पर सभ्यता है, बेशक एक ईश्वरवाद दा नां जिहड़े इब्राहिमिक रैलीजन ने, जूडोइज़म है, क्रिश्चैनिटी है, इस्लाम है, मेजर जिहड़े तीन नां ने, उहनां दे विच वे ऑफ लाइफ तां है, पर जदों उन्हां दे अपनी अपनी होंद की गल करदे हां तां तिन्नां दी ही
एक रब हो के भी रब की जिहड़ी डेफिनेशन आ वो नहीं मिलती। एक रब तो सारे ही कहिंदे आ पर सारिआं दा रब वखरा है। इस तरह भारतीय परंपरा दे विच वी एक ईश्वरवाद की गल होई, ब्रह्म की गल होई, पर देवत्यां दी वी होंद नाल नाल किते ब्रह्म नूं करता नहीं मनिया गया, प्रकृति नूं करता मनिया गया किते। पर जदों गुरु नानक पातशाह दे दी विचारधारा की गल आती है, जां गुरु नानक पातशाह दी विचारधारा दे नाल नाल ही उस तो पहला जिहड़ी आपां भगती मूवमेंट है, उस सारी विचारधारा दे विच जिहड़ा नवेकलापन है, जिहड़ी निर्मलता है, क्योंकि उहदे विच किते ना किते जिहड़े कंसैप्ट सन, जे मुक्ति का कंसैप्ट आया तो मरण तो बाद दी मुक्ति का, कि आवागौणे मनुख ने जन्म लैना, इस आवागौण दे जन्म मरण दे इस चक्कर दे विचों बाहर किवें निकलना है, तो उहदे वास्ते मुक्ति का कंसैप्ट आ गया। नाल ही कर्मां दे आधार ते सुरग ते नरक का कंसैप्ट भी आ गया। भारत विच इह नहीं सी, पर पछमी विचारधारा दे नाल नाल जन्नत ते दोजक दे कंसैप्ट नूं इत्थे वी नवें ढंग नाल उभारिया गया। इस करके बाणी दे विच वी जिक्र आंदा पुरातन जिहड़ी विचारधारा है उस दे विच गुरु अंगद पातशाह कहिंदे आ, कथा कहानी बेदी आणी पाप पुन विचार, दे दे लैणा लै लै देना नरक सुरग अवतार, उत्तम मध्यव जाति जिनसी परम पवे संसार। ये उस भरमां दे विच उस विचारधारा ने लोकां नूं पा दिता, निर्मलता खत्म हो गई। पर नाल ही वह कहिंदे गुरु नानक पातशाह दा अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाणी, सुरती कर्म त्याई, हुक्म साज हुक्मे विच रखे हुक्मे अंदर वेखै, नानक अगों होमै टूटे तां को लिखिए लिखे। तुहानू एक पासे कर्मकांड की गल आ गई, स्वर्ग नरक की गल आ गई, दूजे पासे मनुखता दे मनुखी वैल्यूज की गल आ गई, एक नवीनता। इस तरह इस तों बाद गुरु नानक पातशाह दा एक श्लोक है इस बाणी दे विच, वेद पुकारे पुन पाप सुरग नरक का बियो, जो बीजे सो उगवे खांदा जाने जियो। ते ऐसे विच गुरु नानक पातशाह एक फैसला देंदे ने, ज्ञान रास करमी पल्ले वेद वपारी, ज्ञान रास करमी पल्ले होए, नानक रासी बारा लद ना चलिया कोई। यानी कि जिहड़ी ओ पूंजी है ओ उसने व्यापार बना लिया उसनों। इस तरह पछमी विचारधारा दे विच भी जितना भी खून खराबा इतिहास दे विच अज तक होया पिछले 3000 सालां तों, वो धर्मां दे नाते ही होया, जीवन जांच दे नाते ही होया। वैसे धर्म ते मजहब दोनों दी डेफिनेशन च फर्क है, जिसनों आपां धर्म कहिंदे आ, रिलीजन उहदी एक ऑर्गनाइज्ड पैटर्न हुंदा, धर्म जिहड़ा है नैचुरल है। सो आपां गल कर रहे सी जीवन जांच दी, निर्मल पंथ किवें निर्मल पंथ, इस ते आपां विचार कर रहे सी। इस तों पहला जिहड़ा भी जीवन सी उस नूं, जे असीं भारतीय उपमहादीप दे विच ही गल कर लैने आ, उस नूं कर्मकांड दे विच मुक्ति मरण तो बाद मुक्ति, स्वर्ग नरक शिवपुरी, यानी कि वह यहो जिहा सिस्टम खलत मलत कर छड़िया जिस नूं समझना भी बहुत मुश्किल है। भाई गुरदास जी इस करके कहिंदे आ, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानण हुआ। उस तो पहला विचारधारावां दा यहो जिहा टकराव सी, कोई स्पष्ट नहीं है, ना तो मुक्ति का कंसैप्ट स्पष्ट है, ना स्वर्ग का है, ना नरक का है, ना जनकपुरी, ना इंद्रपुरी, ना शिवपुरी, यानी कि है कितने ने, किस तरह ने,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਇਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 7 ਜਨਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਪਤ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਧਰਮਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਰੂਪਕ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਟਾਫਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੱਬੇ ਇੱਕ ਦੱਜੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਲਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਸਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੁਰਦੇ ਹਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਰ ਡੈਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12-14 ਦਿਨ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਲੂਨੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
कई लोग झूठ भी बोल रहे हैं ते कई लोग सच कह रहे होंगे उन्होंने एक्सपीरियंस से, पर यह जरूरी नहीं कि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हो, उन्होंने हैलूसीनेटेड स्टेट ऑफ माइंड जी चीज़ वापरती है। मैं याद है, मैं बार बार ना नहीं दोहराता, एक महापुरुष की किताब सी मेरी अणडिठी दुनिया, तो वह गल्लां करते भूतां प्रेतां नाल, उन्होंने बड़ी कहानियां वो भी लिखिया हुई हैं। इंडिया में होंगे सी उन्हां दे नाल, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी लैक्चरर सी ते पढ़ता भी सी, वह पुस्तक पढ़ के मैं लिखना पिया, वो लेख मैं अजे तक मिल नहीं रहा, आइदर दिस मैन इज़ ए लाइयर आर पेशेंट ऑफ हैलूसीनेशिया, या तो मनुख झूठ बोल रहा कहानी बनाई हुई है, तो जे वाकई ये हो जा कुछ होया है तो फिर हो सकता है कि हैलूसीनेटड हो गए। ये हैलूसीनेशन एक यहोजी अवस्था है कि ब्रेन दे जड़े जदों कैमिकल्स जड़ा उहदे ते ओ अफेक्ट होंदे ने, यानी कि सिज़ोफ्रीनिया बीमारी की एक अवस्था है, वो जिसनों हैलूसीनेटेड स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। आम तौर पर जिन्हां लोगों का अंत समा होंदा बजुर्गी दे विच, वो स्टेट ऑफ माइंड दे विच होंदे ने, ते ओ जो कल्पना कर रहे होंगे ने उन्होंने बिल्कुल वो स्क्रीन के उपर जिमें मूवी चल रही होंगी वह जहाँ सीन उन्होंने सामने आया होंगे, जो जहाँ वो सोचनी दे फीड होया होंगे। सो कई बार वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। सो मेरा यह कहने का मतलब है कि यहोजियां जड़ियां विचारधावान तो प्रभावित हो के बहुत सारिया गल्लां जड़ियां सानू काल्पनिक सन, तो गुरमत ने पहली बार एक कहा कि भाई मरण तो बाद कोई गारंटी नहीं। इस तरह होर कई चीज़ा ने गुरमत ने करामात नू जगह नहीं दिती, क्योंकि गुरु साहिबान ने इस गल नू बावाज बुलंद जदों कहते ना करामात कहर दा नाम है, क्योंकि कहर किस करके आ कि नेचर दे उलट कुछ होंदा ही नहीं, ते जे कोई करके दिखांदा है उसका मतलब आ कि वह लोकाई नू भुलेखे च पा दिंदा है। उन्हां जिहड़े करामात दी दावा करदे ने उन्हां नालों कई थावां ते कई गुणा वो जादूगर चंगे ने, जिहड़े तां कहिंदे कि भई इह हाथ दी सफाई आ, इह असीं ट्रिक कर रहे हैं, इहदे विच कोई अध्यात्मकता नहीं आ, पर दूजे पासे अध्यात्मकता दा पखंड करके लोग ये भी कहिंदे, लोगों नूं भरमांदे जी मेरे च एक कला है, केड़ी कला है, कला वरत गई अकाल पुरख की, मेरी शक्ति है। इस तरह की कोई भी नेचर नूं समझ के नेचर ते लाज दे मुताबक कोई करिश्मा जिहड़ा आम लोगों नूं ना पता होवे उस विज्ञानक सोच दे मुताबक कैमिकल रिएक्शन दे मुताबक किया जा सकता है लोगों के सामने, पर हकीकतन कोई अजिही करामात नहीं होंदी, ना ही उस हुक्म, क्योंकि इसे करके गुरु साहब कहते हैं हुक्म रजाई चलना, हुक्म की रजा च राजी रहने वाले वास्ते कोई भी यहोजी पराकाल्पनिक पराशरीरक घटना होंदी ही नहीं, ना गुरबाणी इसनों मनती है ना मोर लाती है। सो आपां गल कर रहे सी कि एक निर्मल पंथ गुरु नानक पातशाह ने एक नवा मार्ग जिहड़ा दिता, वह सारिया गल्लां नूं क्योंकि ये आपां कंटिन्यू करांगे। इस विचारधारा के अंतर्गत एक निर्मल एक नवा वे ऑफ लाइफ जीवन जाच दसी, दसन की लोड़ क्यों सी, क्योंकि एक तो धर्म के गुरु नानक पातशाह ही आप कह रहे हैं ना कि जिन्हें भी जड़े मतलब वो लोग जड़े लोग भलाई के जिम्मेवार सन, भावें वह हिंदू धर्म नाल संबंधित सन, भावें इस्लाम नाल संबंधित सन, भावें रूलर सन, जोगी जुगत ना जाने अंत, काजी कूल बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंत, तीनों उजाड़े का बंद। उस धार्मिक खेत्र दे विच जिन्हें भी ये लोग सन जड़े रहबर सन, ये करप्ट हो चुके सन, लोकां नूं परम भुलेखे च पा रहे सन, ते इसे करके लोकां नूं इन्हां जंजीरां चों
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਾਓ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

महाराज मैं तेरे तो बलिहार जाना, जे तू एक घड़ी वास्ते भी ना मैं विसरे। ते महाराज पातशाह बेनती करते ने, हे अकाल पुरख जी मैं तेरे तो बलिहार जाना, हो बलिहारी हो जीवा गुण गाए। बलिहारी क्यों आ? क्योंकि मैं जीवदा ही तां वां, मैं बचिया ही तां वां,

बादशाह मैं तेरी ओट लई है, मैं तेरा आसरा तकिया, कृपा कर ये शरीर पवित्र हो जावे। किवें? अपना शब्द तेरा नाम ये मेरे हिरदे विच

अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी जदों तुसी मेरे ते मेर दी दृष्टि पा दिती ना हे अकाल पुरख परमात्मा नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे फिर मैनू कनेरा सुख मिलेगा बहुता सुख मिलेगा। केड़ा सुख? ओ सुख जेड़ा केवल ते केवल रब दे प्यारियां दे कोल है। ओ रब दे प्यारे जेड़े किसे दी मुथाजी नहीं करदे जिन्हां दा केवल ते केवल आसरा अकाल पुरख परमात्मा है। तो महाराज सच्चे पातशाह फिर आखरी पंक्ति दे विच ये वचन कर रहे ने कि नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै गुर शब्दी मन धीरा। जदों गुरु का शब्द मेरे रोम रोम विच वस गया ते मन नूं धीरज ही गुरु दे शब्द ने देना है, गुरु की बाणी ने देना है। तो सच्चे पातशाह कृपा करन, अरदास करिए महाराज विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। ते जिन्हां दे मन च ए चा ते उत्साह बनिया रहेगा ना कि वाहिगुरु मैं तेरे गुण गाई जावां ते साथ संगत उन्हां नूं फिर दीर्घ सुख प्राप्त होवे, बहुता सुख प्राप्त होवे, उन्हां दा मन नूं धीरज देणगे गुरु पातशाह। यह अज दे पावन पवित्र बचन ने जेड़े आप जी ने लड़ीवार शब्द दे विच सरवण कीते हन। सतगुरु की कृपा दे सदका गुरबाणी की विचार इतिहास की विचार मीरी पीरी दिवस के संबंध में जो विचार की है ये विचार करदियां कई गलतियां कर गया होवांगा, अणजाण जाण के खिमा करियो। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कुटान कोट शुकर, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सिरमौर संस्था है धनवाद, मान योग सिंह साहिबान जी का धनवाद, आप संगतां दा धनवाद। वड्डी गिणती विच संगतां ने बैठ के गुरु की पावन बाणी दी विचार सरवण कीती जी। आओ शब्द दियां आखरी पंक्तियां पढ़ के फिर

कैलगरीज 24 घंटे सत्तों दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने

27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह की रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो, ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड @403

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-501-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www

कर्म मिलावन हार। पांच प्याली पांच पीर छठ पीर बैठा गुर पारी। पांच प्याली पांच पीर छठ पीर बैठा।

0: गुर प्रसाद नानक मत पाई सलोक।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म दूर करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले किती छुट्टी नाल।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम

0: सब जन्म धन धन्ना।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडेस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जन मानस ते देवते किए करतनरा की वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूर चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोरिया दार महला पहला।
0: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुनिया अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सुना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाह पौड़ी आपी ने आप साजे आपी ने रचे ओ नाउ दुई कुदरत साजी है।

0: हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा भाग दे हर पाया नानक रस गुदा रस गुदा रस गुदा।
1: श्लोक महला पहला। खड़िया सबे गोपियां पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर जंजाल नानक मूसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
2: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रैन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी करम लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाली वारोले बहुत अनंत लाटू मदानिया अनगाह पंखी पौंदे लैण दा साहसू है चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत
1: बंदर बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाही सिद्ध न होए नच कुदर मन का चा
2: नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना।

0: नानक हर जिके हर जिके हर जिके।
1: श्लोक महला पहला। पुरखा मिरखा तीर्था तटा मेघा खेता हा, दीपालोवा मंडला खंडा वर पंडा हा, अंडज जे रजुत पुजा खानी सेद जा, सोमिर जाने नारका सरा मेरा जनता हा, नारक जन तो पाए कै संभाले सबना हा, जिन करता करना किया चिंता पे करनीता, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। महला पहला।
0: लख नेकियां चंगियां लख पुना परवान, लख तप ऊपर तीर्था सहज योग बेबान, लख सुरतन संग्राम रान में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया अमल जान, नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहर एक तू, जिन सचो सच वरताया जिस दिन सच, रात सच कमाया सतगुरु।

आस अंदेसे तिन्ह केवल। हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत मन भाम दे दर सोहल कीरत गाम दे नाल कर्म बहारे दर टोना लहने धाम दे कमूला बुझने अपना

0: राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेम सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान मिहूनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वा भै रूप करे सिंगार ऊंचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत होजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा भै मंगै मुख द्वार जति सधावे जुक ना जाने छठ बहा है घर बार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाये ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: वधी सुभज नानका सच्चा वेखर सोए।

गुण बिमल सो जान जान के रे। अमे नाम जाको हुरिया इन सतगुर से शब्द रस पाया। नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् सम।

0: माया मोह परम पै पूले सोते दारा से उप्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई।
1: सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। हो सिफ दुख समी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठियां सोहिया सबना दा विसाहो। सजन सचा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठियां सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम

सलोक महला तीजा हमें जगत मुआ मरदा जाए जिचर विच दम है तिचर नाचे तई।

अगर पाए जाए मोहल्ला तीजा तोर खसम का हुक्म पाया वेण सत गोर चेतिया ना जाए सत गुर मिले अंतर राव रहियाल सदा रहियाल लाए दम दम सदा समाल दा दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पाओ गया जीवन पदवी पाए

सब नाही पाना उस तत बरन न सकिया साद साद कुर्बाना उस तत बरन न सकिया।

0: दरगह अंदर पाइए तागना टूट सपूत महला पहला।
1: तागना इंद्री तागना नारी पलके थुक पवे ने दाड़ी। तागना पैरी तागना हाथी तागना जेवा तागना अखी वे तगाया पे वत्ता वट तागे अवरा।

गौ ब्राह्मण को कलावो को प्रतरण ना जाय। तोती टिका तै जब माली ताल में शाखाई अंतरपुर।

0: तिन हर पूज करावा पूज करावा।
1: सलोक महला पहला। जेकर सुतक मनिए सबता सुतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाणे अनके जिया बाज रखोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए।

0: तेरी तोट न आवे हर कुन केरी के
1: श्लोक महला पहला पहला सुचा आप है सुचा बैठा आए सुचा कह रखे और कोई ना पिटो जाए सुचा होए कह देवया लगा पढ़ श्लोक को हथी जाई सटिया किस एहो लगा दोक अन्न देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया किरत ताहो आपाक पवित्र पापी सुतन कढ़िया।

0: हर हर मन बुठा मन बुठा मन बुठा।
1: श्लोक महला पहला। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का तरके सटिया में तुका फिक्के पाए। फिक्का मुर्गी आखिए पाड़ाले सजाए महला पहला।
0: अंदर हो झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीरथ जे ना वह तरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन ले हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रूप है चुप ही कर जाहे परवाह, ना है किसे केरी बात सच्चे ना हा। दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे, दीवान एको कलम एका हवा तुमा मेल। दारण लेखा पीड़ छुटे नानका जो तिल पौड़िया।

जपे हर नाम, हर नाम तरावे। सलोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लग जाए, नानक कस कंडिए सद ही रह।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 एवेन्यू ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

कामी क्रोधी चातुरी बाजी गर्भे का निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमर्यो राम। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। सतनाम।

0: ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ abmcollege.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

संत करें मन मज्जन पुब जुनू सेवा करिए। इस नूं थोड़ा ध्यान नाल सुणियो। छुटत परवाह कहिंदे धन गुरु रामदास ओह अमृत सरोवर ने जिन्हां विच निरंतर नाम दे फुहारे फुटदे पए। अमृत सरोवर ने धन गुरु रामदास कहिंदे ओह इशनान हुंदा जी अंदर दा। छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करें मन मज्जन। इत्थे ध्यान ते सुणियो, संत जन गुरु रामदास सरोवर विचों अमृत जल बाणी दा पींदे आ ते ज्यों ज्यों बाणी पढ़दे आ त्यों त्यों अपने मन दा इशनान करदे ते पीवै संत करें मन मज्जन पुब जिनों सेवा करिया। ये याद रखियो, तुसी हर साल पुरब मनांदे हो, जिन्ने सिख ने जेड़ा बंदा भी गुरु रामदास नूं चेते करदा, मैं नहीं कह रहा बाणी कह रही है, सच्चे पातशाह कह रहे आ, कहिंदे ओह इक गल चेते रखियो, उहने पूर्व जन्म विच भी गुरु रामदास दी सेवा कीती। ओह पूर्वलियां करके कर रहे, पुब जिनों सेवा करिया, तिन पौ निवार जिन्हां ने धन गुरु रामदास दी बाणी टुब्बे लाए उन्हां दे भय खत्म हो गए, ओह अन भय हो गए, भय तो मुक्त हो गए। तिन पौ निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे कब कल ठाकुर हरदास तने वाह वाह। केडा प्यारा शब्द वरत्या, ठाकुर ठाकुर जी नूं कहने, एडा सन्मान जी। उदों बाबा हरदास नूं की पता है मेरे पुत ने कल नूं की बनना है, ओह तां सिर्फ रोटियां पका के देंदे सन, माता दया कौर जी चलाना कर गए, बाबा हरदास पुत दी पालना करदे रहे, पर पता ही नहीं कि जेड़ा लाहौर दियां गलियां विच पुत्र मेरा तुरिया फिरदा है रहिंदी दुनिया तक, इसने मेरा नाम भी रोशन कर देना। ये सच है, मैं तां कह रहा, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। उत्थे कहिंदे ने ठाकुर हरदास, ठाकुर दर ते स्वामी, ठाकुर उत्थे शब्द वरते हैं ना, बाबा हरदास जी उन्हां दा पुत्र धन गुरु रामदास। कहिंदे ने एक वारी धन गुरु रामदास कोई खाली हिरदिया नूं नाम नाल भर देंदे आ, किड्डी वड्डी बख्श जी। कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सारे अपार भरे, खाली सरोवरां नूं भर दिंदे आ। एक होर बचन कर लां अपना, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुनियो। यह गुरु रामदास दी सिबद है, कच दर ते झूठ जिन्हें छेती टुट जाना, कच छेती टुट जांदा है। इहदा भाव जिहड़ा कच वर्गा मन निक्की निक्की गल तो ढेंदी कला जांदे सी, फिर धन गुरु रामदास आप जी दी बाणी सुनी, वह सोना बन गया। हुण सोने दी तरह कुठाली च पिघल के इन्ना कि चमक गया, हुण टुटदा नहीं, कच टुट जांदा है, वह अडोल अवस्था भी चला गया। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणे सुनियो, बिकते अमृत हुयो जहर तो अमृत हो गया। प्यारियो, जेड़ा शरीर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी वाश नाल भरिया सी, सच्ची जे आस करियो उहनूं धन गुरु रामदास जी ने अमृत नाल भरपूर कर दित्ते। बिकते अमृत हुयो नाम सतगुरु मुख भणियो, जदों सतगुरु दा नाम लिया, महाराज बचन कर रहे आ, लोयो खोयो लाल नदर सतगुर जा तारै, पाण मान करै ज्ञान गुर कहो बिचारै, काठू श्री कंड सतगुरु कियो, दुख दरिद्र तिन के गए, सतगुर चरण जिन परसिया से पास प्रेत सुर नर बै। मैं फिर आप नूं बेनती करांगा कि एक तां गुरु रामदास दी सिफते अज एक पौड़ी असी जरूर पढ़ के जांगे जी, गुरु रामदास दी सिफत उन्हां दा बचन है, काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। असी सत्वे पातशाह गुरु रामदास जी नूं नितने विच रोज चेते करने, खास करके रह राज साहिब दे पाठ विच ते सोहिला साहिब दे पाठ विच। गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहला शब्द गुरु रामदास दा है, मैं भुला ना, हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करूं गुरपास। ये पहला शब्द है। दूजा शब्द है गुरु रामदास जी दा, सो पुरख निरंजन, ये शब्द। तीसरा शब्द है गुरु रामदास जी दा, तू करता सच्यार मैं डासाई, यही है ना शब्द। उस तो बाद सोहिला साहब दा चौथा शब्द है, काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा के। ये शब्द दो वारी गुरु ग्रंथ साहब च है। कहने आ शरीर ना नगर काम दी वास ना भरिया पे, सेते रखियो, ए ब्रेन तो लैके ना पैरां तक जो मर्जी कही जाइए।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

0: इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम

तुखारी राग दे विच जो बारह महां धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह जी का उच्चारण किया होया है। गुरु प्यारी साध संगत जी उस दे विच पहला चार शब्द महाराज जी ने उच्चारण किए हैं, यह चौथा शब्द है। बरसे अमृत धार कि रब दे प्यारियां दे जीवन विच उन्हां दे हिरदे घर विच अमृत दी धारा दी वर्खा हुंदी है, बारिश हुंदी है। जिहड़े परमार्थ दे रस्ते दे उपर चलदे रहिंदे हन उन्हां दी घाल कमाई निष्फल नहीं जांदी। एक दिन आउंदा है भागां वाला जद मालक मेहरां दा मीह पा ही देंदा है। भाई वीर सिंह जी दे वचन हन, लगा रहो मन लगा रहो, जे नितनेम करदा है तां करी चल, बाणी पढ़दा है तां पढ़ी चल, जे सिमरन करदा तां करी चल, छड़ी ना। एक दिन आवेगा जरूर मेरा मीह वसावन वाला, आपे वुटसी मेरा शो, जद मेरा दा मीह पावेगा। कहिंदे उह समां आउंदा है जिस वक्त रब दे प्यारियां दे अंदर अमृत दी धारा जिहड़ी बूंद है सुहावनी, वसदी है, बारिश पैंदी है, मेरा

रूपी हरिमंदर दे विच ओ वाहिगुरु परमेश्वर प्रकाशमान हो जांदे हन। जीव रूप इस्त्री खड़ी हो के उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणा

समूह संगत समूह प्रबंधक जना दा हार्दिक धन्नवाद। कोटान कोट शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। फोइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा जी। आओ अखीरलियां पंक्तियां सरवण कर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।
3: कैप्टन अर्जुन, इज देयर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law ton Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Ina ton kise vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी ले कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइटिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: परमजीत कलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत कलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत कलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठार मोह सहाई दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां शबदो ता गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हों जिस दियाँ एह वड़ियाइयाँ कह नानक सुन हो संत हो शबद तुर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै कर सभागै शबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लगे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो बड़ भागी हो।

दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिन।

0: तरस पयो तरस पया विहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: बोल जी वाहिगुरू। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद न सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां

की माया आप बंधाया, ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ। कहत कबीर सुनहो रे प्राणी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ। खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।